नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आज दिन है शनिवार, सक्संगवत 1948, भद्रपद महीने की आज सातवीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 अगस्त महीने की आज 29 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करता हूं आज की पहली सभा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: साथ में नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगो विल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आरंभ करेंगे हम रोज की तरह 6:10 पर भक्ति गीतों के साथ। 6:30 पर आप सुन पाएंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स। 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 7:05 पर हम पेश करेंगे आज का दिन।

बीट्स ऑफ हार्ट कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ खास चुनिंदे फिल्मी गीत। 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ देशभक्ति गीतों का, और 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

सुरों की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 8:40 पर, जिसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे मोहम्मद अजीज के कुछ बेहतरीन गानों की। 9:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी। 9:15 पर हम आरंभ करेंगे हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को, जिसमें सबसे पहले आप आनंद लेंगे खेलमा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कुछ भक्ति गीत, गायक कलाकार रहेंगे लालथांग पुई जैते और उनके साथी। रांगखोल कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 9:25 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ आधुनिक गीत, गायक कलाकार रहेंगे एलरोडी रांगखोल और उनके साथी। 9:35 पर आप सुनेंगे जयंतिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज आपके लिए हम कुछ लेके आए हैं कुछ भक्ति गीत, गायक कलाकार है जॉन और उनके साथी।

आज के हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का शेष पेशकश रहेगा बेते कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे रामेंगलियाना ब्याते और उनके साथी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और इसी के बीच जारी रहेगा हिंदी में समाचार। दोपहर 2

बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज और उसके तुरंत बाद यानी कि 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 से लेकर शाम के 5 तक आप फिर से आनंद लेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच 4 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आरंभ करते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट
2: चेक,

0: इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है महिला केंद्रित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितम्बर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
3: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है।

0: पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। इन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग इन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दें, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दें।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओ, अब हम आरंभ करते हैं आज का दिन, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पोएम ऑफ द डे में इस पोएम को।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज इलसले क्वामे एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 8 फ्रॉम सीएचटी सिनोड हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट ए पोएम टाइटल फ्लैशबैक, written by Ren Jetley. Yellow and crinkled, with a thick layer of dust, lay an old photograph of mine, of days long past, a chubby toddler, in a sprit-knitted sweater, smiling from ear to ear, as he ate bread, topped with sugar. I smiled at him, and he asked me to smile back, from a two-dimensional window of a black and white era, long gone by. My past stared at me, my throat went dry. The boy in the photograph seemed very content, not a worry in the world, even strolling was time well spent, with a few missing teeth and ruffled up hair. The simplicity of his appearance made him most handsome and fair. Thank you.
1: अब पेश है आज का दिन।

श्रोताओ, आज 29 अगस्त है। आज का दिन भारत के लिए खेल के मैदान से लेकर संविधान निर्माण तक एक बेहद गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। एक और ये तारीख हमें हॉकी के जादूगर की याद दिलाती है, जिनके जन्म दिवस को पूरा देश खेल पर्व के रूप में मनाता है। वही दूसरी ओर आज का दिन विज्ञान के क्षेत्र में बड़े आविष्कारों, सिनेमा के दिग्गजों और पॉप म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े सितारे के जन्म का भी गवाह रहा है। भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों और वैश्विक उपलब्धियों को समेटे हुए चलिए पलटते हैं 29 अगस्त का इतिहास।

विज्ञान के इतिहास में 1831 का ये दिन एक बहुत बड़ी खोज लेकर आया था। मशहूर इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, जिसने भविष्य में बिजली उत्पादन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की दिशा में 1885 को आज ही के दिन एक बड़ा कदम उठाया गया था। मशहूर जर्मन इंजीनियर गॉटलिएब डाइमलर ने दुनिया के पहले इंटरनल कंबशन मोटरसाइकिल का पेटेंट हासिल किया था। व्यापार और इंडस्ट्री के क्षेत्र में 1898 की 29 अगस्त को एक बहुत बड़ी कंपनी की नींव रखी गई थी। अमेरिका में मशहूर गुडियर टायर कंपनी की स्थापना आज ही के दिन हुई। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक है। आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था।

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में 1965 को आज ही के दिन अमेरिका ने एक सफल अभियान पूरा किया था। जेमिनी 5 मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स अपनी 8 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके सुरक्षित धरती पर वापस लौटे थे।

संगीत जगन में सन 1966 का ये दिन मशहूर इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स के लिए बहुत अहम था। इस बैंड ने सैन फ्रांसिस्को के कैंडलस्टिक पार्क में अपना आखिरी व्यावसायिक कॉन्सर्ट किया था, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग जुटे थे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सन 1997 को आज के दिन इंटरनेट आधारित मनोरंजन की एक नई शुरुआत हुई थी। अमेरिका में मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स ने मिलकर मशहूर स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स की स्थापना की थी। प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास में 2005 का दिन अमेरिका के लिए बेहद भयानक साबित हुआ। हरिकेन कैटरीना ने देश को गल्फ कोस्ट और विशेष रूप से न्यू ऑरलियंस में भारी तबाही मचाई थी। खेल जगत में 2012 का दिन लंदन के लिए बहुत खास था, जब दुनिया भर के बेहतरीन एथलीटों का स्वागत करते हुए शानदार पैरालंपिक गेम्स का शानदार उद्घाटन किया हुआ।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2015 की 29 अगस्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि का गवाह बनी थी। दुनिया के कई देशों ने मिलकर महासागरों को प्रदूषण से बचाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं पर मशहूर लगाई थी।

श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। दर्शन और राजनीतिक विचारों की दुनिया को नई दिशा देने वाले महान इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉक का जन्म साल 1632 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के इतिहास में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने साल 1905 में आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा था।

हॉलीवुड सिनेमा के मशहूर सुनहरे दौर की सबसे शानदार और खूबसूरत स्वीडिश एक्ट्रेस इनग्रिड बर्गमैन का जन्म 1915 में आज ही के दिन यानी 29 अगस्त को हुआ था। मशहूर फिल्म गांधी का निर्देशन करने वाले और सिनेमा की दुनिया में दिग्गज ब्रिटिश एक्टर और डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो का जन्म 1923 में आज ही के दिन हुआ। पॉप म्यूजिक की दुनिया पर दर्शकों तक राज करने वाले और किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर अमेरिकन सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन का जन्म साल 1958 में आज ही के दिन हुआ। इंडियन सिनेमा विशेष रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बेहद लोकप्रिय एक्टर अक्किनेनी नागार्जुन का जन्म साल 1959 में आज ही का हुआ था। अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ान भरने वाले मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट क्रिस हेटफील्ड ने साल 1959 में आज ही के दिन जन्म लिया था। टेलीविजन और फिल्म की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अमेरिकन एक्टर विलियम लेवी का जन्म साल 1980 में आज ही के दिन हुआ। म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर करने वाले मशहूर ब्रिटिश पॉप बैंड वन डायरेक्शन के सदस्य लियाम पेन का जन्म 1993 में आज ही के दिन हुआ।

श्रोताओं, आइए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। इस्लाम धर्म के महान विद्वानों और विचारों में से गिने वाले सईद कुतुब का निधन साल 1966 में आज ही के दिन हुआ। बंगाल के विद्रोही कवि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कविताओं से आग लगाने वाले महान रचनाकार काजी नजरुल इस्लाम का निधन साल 1976 में आज ही को हुआ था। हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस इनग्रिड बर्गमैन का निधन साल 1982 में आज ही के दिन हुआ था। इत्तेफाक की बात यह है कि आज उनका जन्मदिवस भी है। फ्रांस की राजनीति के अहम चेहरे और पूर्व प्राइम मिनिस्टर पियर मेस्मर ने साल 2007 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। इंडियन सिनेमा में अपनी बेहतरीन कला निर्देशन के लिए कई अवार्ड जीतने वाले मशहूर आर्ट डायरेक्टर समीर चंदा का निधन साल 2011 में आज ही के दिन हुआ। फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले महान ब्रिटिश डायरेक्टर रिचर्ड एटेनबरो ने साल 2014 में 29 अगस्त को ही अपनी अंतिम सांस ली। हॉलीवुड की कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्म्स में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले दिग्गज अमेरिकन एक्टर जिन विल्डर का निधन साल 2016 में आज ही के दिन हुआ। दुनिया भर में मशहूर और कई देशों के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने अमेरिकन डिप्लोमेट पॉल नीट्स का निधन साल 2004 में आज ही के दिन हुआ था।

अब कार्यक्रम के अंत में आज मनाए जाने वाले दो विशेष दिवसों के बारे में बात करते हैं। आज पूरी भारत में बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन महान इंडियन हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने अपने जादुई खेल से ओलंपिक में भारत को लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे। ये दिन देश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए संदेश देता है। इसके साथ ही आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी बहुत गंभीरता के साथ मनाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाले भयानक विनाश और पर्यावरण को पहुंचाने वाले गंभीर नुकसान के बारे में पूरी दुनिया को चेतावनी देना है, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण हो सके। और इसी के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का दिन, लेकिन जाते जाते आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद

का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

इन्हीं गीतों के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं बीट्स ऑफ हर्ट कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना कुछ खास चुनिंदे गीत सिर्फ आपके लिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है।

0: जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली, वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 996829188 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
7: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 1,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
8: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
9: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@airnewshindi को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
10: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा, बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश, मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

इसी गीत के साथ ही यहीं पे समाप्त होता है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: हफलोंग आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: ये आकाशवाणी का हाफलौं केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम और आनंद लेते हैं मोहम्मद अजीज के कुछ बेहतरीन गानों की।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है सुरों की रंगोली कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ के कुछ बेहतरीन गाने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी।

इन्हीं गीतों के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं खिलमा गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे लालथंग पुई जेते और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं रांगखोल गीतों का। गायक कलाकार रहेंगे एलरोडी रांगखोल और उनके साथी।

0: इन्हीं मधुर गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है रांगखोल आधुनिक गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे एलरोडी रांगखोल और उनके साथी।
1: গলিয়ে গলিয়ে এই গ্রন্থ শুনা যা, প্রতিটো ঘরে নিজ গণনা করা, আমি লিখিম ভবিষ্যতৰ ন অধ্যায়, আমাজ লোকপিয়ন আমাজ বিকাশ।
2: লোকপিয়নৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল আমাৰ বিকাশ।
0: ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं जयंतिया कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे जॉन और उसके साथी।

यहीं पे समाप्त होता है जयंतिया भक्ति गीतों का कार्यक्रम, जिसके गायक कलाकार थे जॉन और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं बेते कार्यक्रम और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। आवाज़ें रहेंगी रामेंगलियाना ब्याते और उनके साथियों की।

0: इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है बेते गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे रामेंगलियाना ब्याते और उनके साथी। और साथ ही समाप्त होता है हमारी पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम भी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी सातवें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई। पता है, एक तो मैं यहां पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूं, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूं। मुझे मालूम था यहां का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगले 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूं जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चीटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहां यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूं उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था

कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हाँ कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी हिम्मत ही मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं। और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़े स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताई दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का।

मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े। भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला। अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था। और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़-कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यहीं थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहाँ रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा, और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूँ सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रोएदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा, अभी तो कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

उसकी इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच

लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं अभी नहीं, वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात, उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी, बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा, अच्छा भाई इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कहा। क्या, पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर, अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों एक साथ हंसे।

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले

शायद हम ही थे, सुकरात धीमे से बोला। तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया। तो ये लो अपना चार्जर, साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया। मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45
1: पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सृजन भारती के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की सृजन भारती गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है। सृजन भारती के इस आयोजन में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने माने फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्म जी और गायिका दीपाली सहाय को। इन दोनों अतिथियों का विविध भारती परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख संतोष जाधव जी ने और इंजीनियरिंग हेड सोपान तायडे जी ने। एडीपी अनुश्री पाठक और एडीपी तेजश्री कांबले और प्रोड्यूसर जुबैर खान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। संचालन आपकी इस रेडियो सखी ममता ने किया। तो अब माइक उद्घोषक यूनुस खान को सौंप रही हूँ। शैलेंद्र के गीतों और जीवन की अनमोल कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यूनुस खान। तो आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का।
1: इस बार सृजन भारती करने की वजह यह है कि 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतकारी पर बहुत गहरा असर डाला है। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र का जन्म हुआ था और बहुत छोटी जिंदगी शैलेंद्र को मिली। 30 अगस्त 1923 से 14 दिसंबर 1966 तक। 14 दिसंबर जिस दिन शैलेंद्र इस दुनिया से गए वो राज कपूर का जन्मदिन होता है और राज कपूर अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे तब ये खबर आई कि शैलेंद्र नहीं रहे हैं। ये राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जरा ये देखिए कि तकरीबन उनकी जो जिंदगी थी वो 43 साल की जिंदगी थी और इन 43 साल में जो गीत यात्रा थी वो 1949 से 1966 तक, यानी तकरीबन 17 साल की। लेकिन इतने सारे गाने शैलेंद्र और इतने बेमिसाल गाने शैलेंद्र हमें दे गए हैं कि ये लगता है कि शैलेंद्र ने बहुत लंबी जिंदगी जी। वो जो आनंद का डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, मुझे लगता है ये शैलेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। 17 साल में इतने गाने और इतने अनमोल गाने, इतने कल्ट गाने, ऐसे गाने जिनमें कहीं अपने समाज की झलक दिखती है, कहीं राजनीति की झलक दिखती है, रोमांस है, दर्शन है, जीवन का फलसफा है, सुख दुख हास्य, कौन सा ऐसा विषय है जो शैलेंद्र के गानों में नहीं है। मुझे लगता है कि 43 साल कितना छोटा समय होता है एक व्यक्ति के लिए। तकरीबन 40 की उम्र में तो इंसान समझदार बनना शुरू होता है, उसे जिंदगी की समझ आती है और तब तक शैलेंद्र निकल लिए। ये जो एक घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में आप ये पाएंगे कि कितना बड़ा गीतकार था ये बंदा। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र पैदा हुए और तकरीबन 40 के दशक की बात है। राज कपूर ने शैलेंद्र को एक कवि सम्मेलन में सुना था और इस कवि सम्मेलन में शैलेंद्र अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब। और रेलवे में वो मैकेनिक थे और झांसी में उनकी नौकरी लगी थी और मुंबई उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई आने के बाद वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और उसके अलावा मुंबई कॉयर ऑर्केस्ट्रा, जहां सलील चौधरी हुआ करते थे, तो वो जो पूरी प्रोग्रेसिव दुनिया है उसमें बहुत एक्टिव थे। इप्टा में बहुत ही एक्टिव थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और उनके जनगीत बहुत शानदार तरीके से वहां गाए जाते थे। आपको याद होगा कि सलील चौधरी ने उनका एक जनगीत कंपोज किया था उसी जमाने में जो बॉम्बे कॉयर गाया करता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये ऐसा गीत है जो जोश ला देता है और इप्टा में ये गाना पूरे देश में खूब गाया जाता है। और इसके अलावा हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी शैलेंद्र की रचना है। अब हुआ यूं कि राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि आपको आग के गाने लिखने हैं और शैलेंद्र ने पूरी तरह से ठुकरा दिया कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। फिल्मों में लिखने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया। शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और झांसी में वो मौजूद थी और उन तक भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी देखभाल के पैसे नहीं थे और बहुत ज़रूरी तौर पर उन्हें पैसे भेजने थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पैसे कहाँ से जुटाए जाएं, तो वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 500 रुपये चाहिए। राज कपूर के ऑफिस में उस वक्त 500 रुपये थे नहीं, उन्होंने घर से मंगाए और शैलेंद्र को 500 रुपये दिए, लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़े दिन बाद कहीं से पैसे आए, शैलेंद्र वो पैसे लौटाने के लिए गए, तब राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे कोई सूदखोर महाजन समझ रखा है कि जब चाहे तुम मुझसे उधार ले लोगे और जब चाहे वापस कर दोगे, तुम्हें मेरे लिए गाने लिखने ही पड़ेंगे। तब राज कपूर के जोर देने पर शैलेंद्र ने बरसात के दो गाने लिखे, एक तो बरसात का टाइटल गीत। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी जब मायके में थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। शैलेंद्र ने शकुंतला जी की चिट्ठी में लिखी हुई इस लाइन को एक गाने में बदल दिया। ये गाना सुनते हैं।

बरसात में उन्होंने जो दूसरा गाना लिखा वो था पतली कमर है तिरछी नजर है, वहां वो लिखते हैं मौसम के साथ जो बदलता जाए आदमी वही है जो चलता जाए, एक तरह से वो उस जमाने का आइटम सॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी वो जिंदगी का एक फलसफा देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 1953 में दो बीघा जमीन बन रही थी, बिमल रॉय प्रोडक्शन एक तरह से अपनी शुरुआत कर रहा था बॉम्बे में। बिमल रॉय अपने सारे साथियों के साथ जब वहाँ आए थे, उन्होंने बॉम्बे में बाइसाइकिल थीव देखी, फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल था वहाँ पर उन्होंने देखी, तो बस से वो लौट रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें सलील चौधरी थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, नवेंदु घोष थे, और बिमल रॉय ने कहा कि हमारे देश में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और इस तरह से सलील चौधरी की कहानी पर दो बीघा जमीन फिल्म बनी, और उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी और इस फिल्म

में शैलेंद्र ने एक बहुत ही बेमिसाल गाना लिखा था जो उम्मीद का गाना है। ये गाना कहता है, तेरी राह में कलियों ने नैन बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, नीला अंबर मुस्काए हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले भाई। ये शैलेंद्र थे।

दो बीघा जमीन का ये गाना कितना कल्ट गाना है ये आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र की असली यात्रा जो शुरू होती है राज कपूर के साथ, वो आवारा के साथ शुरू होती है। एक दिन ये हुआ कि शैलेंद्र अपने रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तब राज कपूर की गाड़ी आई और राज कपूर लगभग उन्हें घसीटते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर ले गए और ख्वाजा अहमद अब्बास ने तकरीबन 2.5 घंटे का नरेशन किया। और 2.5 घंटे का एक फिल्म का नरेशन करने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि कविराज क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइन में ये जो 2.5 घंटे का नरेशन है उसको पिरो दिया। उन्होंने कहा, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। इतने तपाक से उन्होंने ये बोला, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। राज कपूर क्यों शैलेंद्र को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी वजहें थीं कि इतने कमाल के गाने और ऐसे फलसफा अपने गाने में उतार देना। ये शैलेंद्र भले फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भीतर जो गीतकार था वो बहुत ही कमाल का गीतकार था। और जब वो सिनेमा में आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए। ये गाना सुनते हैं।

ये जो आवारा का गाना है, ये चाइना, टर्की, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि जापान और तमाम देशों में ये गाना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और अभी तो साउथ कोरिया से भी इस गाने के वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पर इस गाने को सब लोग गाते हैं। उज़्बेकिस्तान के एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं बोबुमुरोव हमदानोव। बोबुमुरोव हमदानोव राज कपूर के गाने गाते रहे हैं और उज़्बेक सिंगर थे, लेकिन वो जिस अंदाज में गाते हैं, अब सोचिए कि इन लोगों की भाषा नहीं है ये, लेकिन जिस अंदाज में ये, जिस खुशी के साथ, जिस जोश के साथ गा रहे हैं। बोबुमुरोव के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवारा का वीडियो, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आवारा के बाद श्री 420 आती है, और श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी की सबसे ज़्यादा नायाब फिल्मों में से एक है। श्री 420 का जो सबसे मशहूर गाना है वो है मेरा जूता है जापानी। 1955 का जमाना था, भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था और भारत एक तरह से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन रईस लोगों में चलन ये था कि जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी रूसी। तो शैलेंद्र ने इस पर एक तंज मारा था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो बाहर का सामान इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे थे। तो अमूमन हम इस गाने को तंज के रूप में नहीं देखते, लेकिन ये बाकायदा एक तंज है। और इस गाने में जो सबसे दिलचस्प अंतरा है वो है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। यानी ये वो देश है जहां एक आम आदमी भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है।

इस गाने में एक और बहुत ही शानदार लाइन शैलेंद्र लिखते हैं कि बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। इतनी आम भाषा में शैलेंद्र ऐसा फलसफा दे जाएंगे, ये उनकी कलाबाजी है जो वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिर्फ राज कपूर के लिए ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, देव आनंद के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। और यहाँ जो गाना अब मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये गाना देखने का गाना ज्यादा है। इस गाने में शैलेंद्र अनियोक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। ये गाना पूरी तरह से ऊपर वाले के लिए लिखा गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात कही जा रही है, पर सुनने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऊपर वाले की नहीं, ऊपर वाली की बात हो रही है। ये गाना दिखाइए।

जरा सोचिए कि माँ बाप को वो वहीदा रहमान ये बता रही है कि ऊपर वाले की बात कर रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है, तो ये कितना कमाल है। अमूमन हम सुन लेते हैं गाना, लेकिन सिचुएशन पर इस तरह से लिखना और वो भी धुन पर लिखना, ये बहुत नायाब गाना है, बहुत अद्भुत गाना है। अमूमन हमारा ध्यान नहीं होता इस बात पर। अब एक गाने की कहानी। एक बार ये हुआ कि एसडी वर्मन ने शैलेंद्र को एक सिचुएशन दी और कहा कि इस पर तुमको गाना लिखना है। अब काफी टाइम हो गया शैलेंद्र ने गाना लिखा ही नहीं, तो एसडी वर्मन को गुस्सा आया। उन्होंने आरडी वर्मन को भेजा कि जब तक शैलेंद्र गाना ना दे तुम वापस मत लौटना। अब ये हुआ कि शैलेंद्र के पास पंचम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में जा रहा हूं। तो वो पंचम को लेके शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में चले गए। अब वहां पर जयकिशन को ये लगा कि यार ये दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा इधर क्या जासूसी करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा तुम यहां पर क्यों आया भाई। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शैलेंद्र, क्योंकि क्या होता है कि काम चल रहा होता है वो सीक्रेट होता है ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं शैलेंद्र जी गाना नहीं दे रहे हैं तो मैं इसलिए उनके साथ आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो वो मेरा गाना लिख रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। तो जयकिशन थोड़ा भड़क गए थे। शैलेंद्र ने जयकिशन का काम पूरा किया और अब पंचम ने कहा मुझे गाना दीजिए ना, नहीं तो बापू बहुत मारेंगे, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं नेशनल पार्क चलते हैं। तो जुहू से ये लोग गाड़ी से नेशनल पार्क आ गए। शैलेंद्र जो है नेशनल पार्क में इधर उधर टहलते रहे, सिगरेट विगरेट पीते रहे, सोचते रहे, तो बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं एक काम करते हैं कि चलो चलते हैं जुहू बीच की तरफ। तो नेशनल पार्क से वो उनको ले गए जुहू बीच की तरफ। अब पूनम की रात थी, जुहू बीच पर शैलेंद्र बैठे हुए थे और पंचम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है। तो पंचम घबरा गए कि इनको कैसे पता चला कि मैं स्मोक करता हूं। तो उनको लगा ये क्या है। तो उन्होंने माचिस दी और माचिस पर उन्होंने ट्यून बजा के बताई। और जब ट्यून बजा के बताई तो शैलेंद्र ने वहीं जुहू बीच पर पूनम की रात में दो लाइनें लिखी और कहा कि जाओ अंतरे तुमको बाद में मिल जाएंगे। वो दो लाइनें थी, खोया खोया चांद खिला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। अब जरा सोचिए कि खोया खोया चांद तीन ही वर्ड्स हैं, है ना, खुला आसमान दो ही वर्ड हैं, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी, मस्ती भरी हवा जो चली, ये जो कमाल है ये। और सिचुएशन जब पता चलती है तो गाना सुनना जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।

0: खोया जा।
1: तो भाई ये शैलेंद्र के गानों की कहानियां हैं। बम्बई जब शैलेंद्र आए तो वो माटुंगा में वर्कशॉप में काम करते थे और परेल में रेलवे के एक छोटे से दड़बे नुमा क्वार्टर में रहते थे। उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ख्वाब था कि इस बम्बई शहर में अपना एक घर होना चाहिए और अरब सागर के किनारे बसा आसमान छूता शहर बम्बई, और ये शहर जो कि सिकुड़कर जीता है, कम जगहों में जीने की आदत है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर, पुलों पर, टैक्सी में, मैदानों में, रेलवे स्टेशनों में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाते हैं। शैलेंद्र का ये ख्वाब पूरा हुआ था 1960s के ज़माने में, अपना घर बनाने का ख्वाब। 1960 में उन्होंने लिंकिंग रोड बैंड्रा में अपना एक घर बनाया, बंगलो बनाया, वो आज भी मौजूद है। अगर आप लिंकिंग रोड पर जाते हैं तो वहाँ एक शैलेंद्र चौक है, शैलेंद्र चौक वाली गली में अंदर जाएं तो आपको रिमझिम मिलेगा। पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ जाके माथा टेक के आया। रिमझिम वहाँ लिखा है शंकर शैलेंद्र और लिखा है रिमझिम। रिमझिम इसलिए क्योंकि बारिश ने उनका करियर बनाया, बरसात फिल्म ने, और बारिश उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले का नाम रिमझिम रखा हुआ है। बहुत जर्जर हालत में मौजूद है, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत बेमिसाल जगह है। इसके अलावा शैलेंद्र ने अपने काम करने के लिए सांताक्रूज में एक फ्लैट और लिया था जिसको बापू निवास कहा जाता था। ये जो बापू निवास है ये बड़ी करामाती जगह थी क्योंकि यहाँ एक तरफ गुलजार मौजूद होते थे, दूसरी तरफ देबू मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, मतलब ये एक तरह से घेटो था। और गुलजार साहब ने कहीं लिखा है कि बापू निवास जाओ तो पता चलता है कि कोने में बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के टोटे हैं, अंडरवियर्स और टॉवल्स सूख रही हैं। हर आदमी वहाँ जा सकता है, हर आदमी वहाँ रह सकता है और किसी के आने पर कोई रोक नहीं है। इतनी भब्बड़ के बीच थोड़ी देर वक्त निकाल के शैलेंद्र अपने गाने वहाँ पर लिखा करते थे। बापू निवास में शैलेंद्र ने अपने बहुत सारे गाने लिखे हैं। ये जगह आज भी मौजूद है, हालांकि अब ये शैलेंद्र के पास नहीं है। एक कमरा, किचन और बरामदे वाला ये घर बापू निवास। घर का जो ख्वाब है उस पर शैलेंद्र ने एक बहुत ही क्यूट और स्वीट गाना लिखा है, वो सुनते हैं।

गाना जो है हम सब के ख्वाबों का गाना है, घर के ख्वाब का गाना है। शैलेंद्र का एक और रंग आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं। 1960 में एक फिल्म आई थी, बप्पी सोनी की फिल्म थी, एक फूल चार कांटे, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान थे। इसका जो बहुत ही मशहूर गाना है वो है मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, वो भी शैलेंद्र ने लिखा है। लेकिन इस फिल्म में एक सरप्राइज गीत था, एक सिचुएशन ऐसी आई जहां शैलेंद्र से कहा गया कि आपको पूरी तरह से अंग्रेजी गाना लिखना है। उस जमाने में बॉम्बे में रॉक एंड रोल और जैज का बहुत चलन था, और साउथ बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जहां जैज हुआ करता था, लाइव जैज हुआ करता था। तो एक नेवी में काम करने वाले व्यक्ति होते थे सरदार जी, उनका नाम था इकबाल सिंह सेठी। इकबाल सिंह ब्रिटिश इंडियन नेवी में काम करते थे, और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें गोरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को एल्विस पसंद था, तो उन्होंने एल्विस को अपना लिया और एल्विस की स्टाइल में गाना गाने लगे। जब इकबाल सिंह सेठी को शैलेंद्र का लिखा अंग्रेजी गाना गाने को कहा गया, उन्होंने गा लिया, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी की इजाज़त तो थी नहीं, तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा कि भाई आपने ऐसे बिना इजाज़त के फिल्म में काम कैसे कर लिया। लेकिन ये जो गाना है ये है ओ ब्यूटीफुल बेब ऑफ ब्रॉडवे, रॉकिन राइट ओवर माई हार्ट, यू हैव सेट मी अ फायर एनी वे, यू आर टू गुड इन योर आर्ट। ये शैलेंद्र ने अंग्रेजी गाना लिखा है।

0: everything a fit. Oh, Mr. Shoe, oh!
1: ये अंग्रेजी गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ, शैलेंद्र ने बहुत मजा किया, गाने भी लिखे हैं और ये अंग्रेजी गाना भी उनका एक कमाल है। बल्कि एक गाना है अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, उसमें वो अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। वो गाना आज मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, पर उसको आप कभी सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, इन तमाम भाषाओं के सेंटेंसेस आते हैं। एक बार ये हुआ कि शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का अपना आपस में एक वादा था कि हम साथ काम करेंगे, हमेशा एक साथ काम करेंगे, जब भी हमें कोई फिल्में मिलेंगी तो गाने आप लिखोगे और ये एक हमारी टोली जो है हम उसको हमेशा निभाएंगे। लेकिन एक फिल्म आई कॉलेज गर्ल, जिसमें पता नहीं क्या वजह थी कि शैलेंद्र की बजाय शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कृष्ण को साइन कर लिया। अब शैलेंद्र बहुत गुस्सा हुए कि भाई ये वादा खिलाफी हो गई और मेरी बजाय किसी और से लिखवा लिया, तो वो बहुत नाराज हो गए। और एक रेस्टोरेंट में उन्होंने देखा कि शंकर जयकिशन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, और बैरे से कहा कि जाओ उसको दे आओ। तो ये नाराजगी थी और शंकर जयकिशन ने इसे एक गाने में बदल दिया, प्रॉपर गाने में बदल दिया। तो आम जिंदगी की ये घटना जो है ये रंगोली के गाने में बदल गई। ये गाना सुनिए।

0: दुनिया।
1: और अब शैलेंद्र और नवकेतन की सबसे बड़ी फिल्म गाइड की बात करते हैं। गाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब गाइड फिल्म बन रही थी तो उसके लिए गीतकार के तौर पर हसरत जयपुरी को चुना गया था, और हसरत जयपुरी ने एक दो गाने लिखे भी थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोल दिया था इस फिल्म के हीरो के बारे में जिसका यहाँ जिक्र करना या उसे बोलना बहुत अशालीनता हो जाएगी, तो उनको फिल्म से निकाल बाहर कर दिया गया था। और शैलेंद्र जी के पास गए थे विजय आनंद और देवानंद, और उन्होंने कहा कि आपको गाइड फिल्म के गाने लिखने, तो उन्होंने कहा सिंस आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस मैं डबल पैसे लूंगा, और उन्होंने डबल फीस चार्ज की थी। लेकिन गाइड के जो गाने उन्होंने लिखे हैं, एक एक गाना इतना कमाल है। सबसे पहले मैं मुसाफिर जाएगा कहां की बात करना चाहता हूं। अगर आपने गाइड फिल्म देखी हो तो इंटरमिशन के भी एक घंटे बाद एक दृश्य आता है जहां रोजी जेल में राजू बंद है और उससे मिलने जाती है, और वहां वो ये कहती है कि राजू तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा, काश मैं तुमको बचा पाती, और कोई बात नहीं ये वक्त बीत जाएगा और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तो राजू जेल की सलाखों को पकड़ता है और कहता है हाँ रोजी नए सिरे से शुरू करेंगे जीवन। मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से शैलेंद्र ने इस गाने को उगाया था, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। मुझे ये लगता है कि वहीं राजू ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना है, उसे ना तो रोजी के पास लौटना है, ना अपने घर, अपने गांव, अपनी माँ के पास लौटना है। और जब वो जेल से छूटता है, और उसके बाद अगर आप इस गाने को देखें, गाइड फिल्म शुरू इस गाने से होती है, और जब आप देखें तो सबसे पहले राजू का सूटकेस गिरता है, रोजी की तस्वीरें गिरती हैं, उसके सूटकेस छूट जाता है, उसके बाद चप्पल छूट जाती है, उसके बाद कपड़े छूट जाते हैं, फिर वो कभी किसी बस में लटक के जाता है, कभी किसी ट्रक पर जाता है, और फिर एक जगह थक के लेटा हुआ होता है और एक साधु उसको रामनामी चादर ओढ़ा देता है, और वहां से वो साधु मान लिया जाता है, और फिर जो गाइड का कंफ्लिक्ट है वो शुरू होता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि एसडी बर्मन ने एक बांग्ला गाना बनाया था, दूर कौन पारो बाशे तुमी चोलो जाई बारे कोबे आई बारे। ये जो गाना है इसको यूट्यूब पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। इसी ट्यून पर मुसाफिर जाएगा कहां बनाया गया था। और अगर आप रिकॉर्ड पर गाना सुनते हैं तो एक अंतरा अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन वो वर्जन मौजूद है और ढूंढने पर वो मिल जाएगा, जिसको जावेद साहब कहते हैं कि शैलेंद्र का लिखा सबसे नायाब अंतरा है इस गाने का। वो है तूने तो सबको राह बताई तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां, क्यों नाचे सपेरा। क्या जुमला है, देखिए आप क्या शानदार जुमला है, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां। ये गाना जिंदगी की क्षणभंगुरता, रिश्तों के खोखलेपन, समाज और संसार की सच्चाइयों को उजागर करता है। इसका एक अंश सुनते हैं।

गाना और अब गाइड के और भी दूसरे गानों की बात करना चाहते हैं। गाइड फिल्म एक महिला की आज़ादी और अपनी जिंदगी को चुनने वाली फिल्म है और अमूमन क्या होता है कि फिल्मी गानों में पहले मुखड़ा आता है और उसके बाद फिर अंतरा आता है, लेकिन गाइड का एक गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने में पहले अंतरा आता है और बाद में मुखड़ा आता है, ये प्रयोग शैलेंद्र ने किया था। और हुआ ये था कि देवानंद शूटिंग के लिए जयपुर चले गए और उन्होंने एसडी बर्मन से कहा कि गाना जल्दी भेजिएगा। तो एसडी बर्मन ने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा थीम सॉन्ग बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन देवानंद इससे खुश नहीं थे, विजय आनंद भी खुश नहीं थे, हालांकि यूनिट के लोग इस गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि चूंकि हम लोग चित्तौड़ आए हुए हैं तो इस गाने को शूट कर लेते हैं, एडिट पे नहीं अच्छा लगा तो उड़ा देंगे। जरा सोचिए कि इस गाने को लगभग उड़ा दिया गया था, लेकिन जब वो गाना शूट हुआ तो यूनिट सुबह शाम गा रही है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और तब देव को लगा कि ये गाना बहुत कमाल का गाना हो सकता है और उन्होंने इस गाने को रखा फिल्म में। और जिंदगी की उलझनों और जिंदगी की ठोकरों में फंसी एक महिला की आजाद उड़ान का गाना है। इस गाने से पहले के डायलॉग आपको याद है, देव कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की एक औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती हैं 16 साल की एक बच्ची, भोली, नादान, शरारत से भरपूर। और कट गाना शुरू होता है, वो ट्रक में जा रहे हैं और वो मटका फोड़ती है और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग ऑफ सिनेमा, कमाल गाना है।

गाइड ऐसी फिल्म है जिसमें दो और भी कमाल के गाने हैं, बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म में आते हैं, मुंह से छल किए जा और क्या से क्या हो गया, एक ही ट्यून और दो गाने। एस डी बर्मन ने यह सोचा था कि एक ही ट्यून पर दोनों गाने आएंगे, बैक टू बैक आते हैं, जब वो मुंह से छल किए जा होता है और मुंह से छल किए जा जैसे ही खत्म होता है तो वो सलाखें और जाल और देव उस जाल में फंसे हुए हैं और वहां पर क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, एक ही ट्यून पर दोनों गाने हैं और वो भी दोनों गाने बहुत ही कमाल के गाने हैं। लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प किस्सा शैलेंद्र के गानों के बनने का हुआ। यह था कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लेख टंडन एक दिन फेमस ताड़देव में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, तकरीबन 100 साजिंदे तैयार थे, रिहर्सल हो चुकी थी और लता जी के आते ही गाना रिकॉर्ड हो जाना था। लेकिन तभी स्टूडियो में राज कपूर का फोन बजा और राज कपूर ने जयकिशन को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ कि कविराज ने कौन सा गाना लिखा है। अब ये हुआ कि उन्होंने फोन पर ही पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना सुना, वो गाना था काटे न कटे रहना, और जैसे ही गाना खत्म हुआ उन्होंने कहा ये गाना मुझे दे दो, इस गाने पर मेरा हक है, तुम लोग दूसरा लिख लो। अब गाना नहीं है और लता मंगेशकर आने वाली हैं। अब लेख टंडन की हवाइयां उड़ रही थी कि लता जी आएंगी तो क्या करेंगे। लता जी आई भी और फिर ये कहा गया कि भाई गाना तो था लेकिन अब नहीं है, अब गाना लिखना पड़ेगा। तो लता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे गाने रिकॉर्ड करके आती हूँ, तब तक आप लोग गाना लिख लो। अब ये हुआ कि शैलेंद्र को लेख टंडन लेके गए आर्य कॉलोनी, वहां उनको खाना दिया और कहा कि भाई यहाँ लिखो, तो उन्होंने खाना खा लिया लेकिन गाना नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नेशनल पार्क चलते हैं, नेशनल पार्क में घूमे, वहां पर भी गाना नहीं हुआ। अब लेख टंडन को लगा कि आज मर गए, क्योंकि लता जी जब आएंगी और दोबारा गाना नहीं है तो क्या होगा हमारा। तो जब वापस लौटे तो देखा लता जी की कार स्टूडियो के बाहर खड़ी है, तो लेख टंडन कहीं जाके छिप गए। उन्होंने कहा अब तुम ही सामना करो, मैं तो भाई इस मामले में नहीं पड़ूंगा। तो लेख टंडन छुप के देख रहे थे कि स्टूडियो के केबिन में शैलेंद्र लता जी के पास गए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। लेख टंडन को ये लगा कि शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि मेरे से गाना हुआ नहीं और मैं ये गाना बाद में लिख दूंगा और लता जी की डांट खाएंगे। पर जब उन्होंने स्पीकर का PFL दबा के सुना कि अंदर बात क्या हो रही है, तो लता जी की आवाज आई, दो ही अंतरे होंगे ना शैलेंद्र जी, यानी लता जी के सामने बैठ के उन्होंने एक झटके में गाना लिख दिया वहां पर, और ये गाना था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी।

जरा सोचिए कि ये गाना जो शैलेंद्र ने एक झटके में ऐसे लिख दिया जैसे कहीं से याद करके आए हो, इस गाने के जो अंतरे हैं वो क्या कमाल हैं। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, ये एक अंतरा है। दूसरा अंतरा है जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, और ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी गागर में सागर का पानी। इतने जोरदार तरीके वाला गाना और ऐसे एक झटके में लिख दिया, ये शैलेंद्र की बहुत बड़ी खासियत है। और जरा सोचिए कि जो पीछे की कहानी है ये इन गानों को ज्यादा नायाब बनाती है, और शैलेंद्र की जो लफ्जों की कारीगरी है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से उभारती है। 1948 में जब राज कपूर आग बना रहे थे तो इंदर राज आनंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम रखा गया था घरौंदा। राज कपूर ने तय किया था कि इसे वो बनाएंगे नरगिस के साथ, लेकिन वो हो नहीं सका। और बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों को ऑफर किया, देवानंद को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। उत्तम कुमार को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। राजेंद्र कुमार राजी हुए, नरगिस की जगह पर वैजयंती माला आई और घरौंदा की बजाय इस फिल्म का नाम रखा गया संगम। संगम राज कपूर की बहुत बड़ी फिल्म, दो इंटरवल वाले इसके वर्जन होते थे। और अभी पीछे जब राज कपूर फेस्टिवल NFAI ने किया था तो दो इंटरवल वाला वर्जन रिलीज किया गया था और वो हमें टॉकीज में देखने मिला था। क्या कमाल की ये फिल्म है। और जरा सोचिए कि इस फिल्म में शैलेंद्र, यहाँ जो पक्ष है अब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शैलेंद्र के भीतर बैठा एक स्त्री मन। शैलेंद्र एक महिला की व्यथा को बहुत खूबसूरती से गानों में उतारते रहे, और तीन गानों की मैं बात करूंगा जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाते हैं। इस फिल्म में एक गाना है ओ मेरे सनम। ओ मेरे सनम जो है वो एक ऐसा गाना है जो एक स्त्री जिस पर उसके पति को शक है, फिल्म की क्लाइमेक्स में जब ये गाना हो रहा होता है तो ये गाना जैसे अपनी सारी बातें कहता है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम, ओ मेरे सनम। और यहाँ शैलेंद्र आगे लिखते हैं कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम। ये शैलेंद्र का एक स्त्री मन है।

शैलेंद्र की स्त्री मन की बात हो रही है। कुछ और गानों का जिक्र करते हैं। जागते रहो के एक गाने में वो एक स्त्री की तमन्नाओं को लिखते हैं। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, प्याज खिड़की खुली मत छोड़ो, ये गाना। और दूसरी तरफ एक और गाना है जिसमें कहते हैं कि एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, ये भी कितनी सुंदर लाइन है। और इसी तरह से बंदिनी के एक गाने में वो लिखते हैं कि मैं तो पंछी पिंजरे की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात रे सागर, कैसे चलूं उस पार। ये क्या कमाल का गाना है। ओ पंछी प्यारे सांस करे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। पर एक ऐसा गाना है जो इन तमाम गानों पर भारी है और ये फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, जिसका गाना है अजीब दास्तां है ये। इस गाने का बैकग्राउंड ये है कि हीरोइन जो है वो नर्स हैं मीना कुमारी, और अचानक वो ये पाती हैं कि डॉक्टर साहब कश्मीर गए तो उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है और शादी की पार्टी हो रही है। मीना कुमारी की तो सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और वहां पर वो ये गाना गाती है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म।

एक और गाना जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाता है, और वो गाना है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का गाना। इस फिल्म में ये है कि जो पति है उसकी मृत्यु होने वाली है, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, और पत्नी के दिल के भीतर तूफान मचा हुआ है, और वहां वो गाती है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की रहना। वहां वो जो लाइन जो है, शैलेंद्र ने अल्फाज का खेल किया है, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे, जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। ये शैलेंद्र हैं।

1964 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हो रहा था तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड साहिर लुधियानवी को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये अवार्ड उन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया के लिए दिया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि साहिर मंच पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस अवार्ड के सच्चे हकदार शैलेंद्र हैं, जिन्होंने बंदिनी के लिए मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे जैसा गाना लिखा है। और साहिर ने ये कहा कि सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीत है और ये भी उन्होंने कहा कि शैलेंद्र असली गीतकार हैं, हम सब तो बस शायर हैं। बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी बांग्ला के एक बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं जो जेलर थे, उनका नाम था जरासंघ, और उनकी कहानियां हमेशा कैदियों पर केंद्रित होती थी। बंदिनी भी कैदी की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिससे एक मर्डर हो जाता है, जहर दे देती है वो। तो ये फिल्म थी और इस फिल्म में एस डी बर्मन ने एक बहुत ही सुंदर कजरी बनाई थी, निबुआ तले डोला रख दे मुसाफिर पर अब के बरस भेज भैया को बाबुल। और मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये सभी की आंखों में आंसू ला देता है।

0: कितना सुंदर गाया दीपाली ने, हर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर। अब हम मधुमति की तरफ बढ़ रहे हैं। मधुमति बिमल रॉय, सलील चौधरी और शैलेंद्र की टीम का एक कमाल थी, और इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे किस्से हैं, जैसे सुहाना सफर और मौसम हसी गाना बन रहा था तो सलीलदा और शैलेंद्र खंडाला घाट पर घूमने चले गए थे। वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए यूं कर रहा था, हुर्र। और आप ये देखिए कि सुहाना सफर गाना इसी तरह से शुरू होता है, उन्होंने ये हुर्र हुर्र जो है उसमें रख लिया था। इसी तरह से आजा रे परदेसी एक और कमाल का गाना है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मतलब शैलेंद्र कैसे छोटी छोटी सूक्तियां दे देते हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये गाना फिल्म जागते रहो के बैकग्राउंड म्यूजिक में बजी एक ट्यून से आता है। जागते रहो के बैकग्राउंड में ये ट्यून आती है और सलीलदा और शैलेंद्र को ये ट्यून बहुत पसंद थी, तो शैलेंद्र के इसरार पर ये गाना मधुमति के लिए बनाया गया था उस ट्यून को लेके। और इस फिल्म का जो सबसे शानदार गाना है वो बिछुआ है। सलील चौधरी ने बचपन में असम में कुलियों को ये गाना गाते हुए सुना था, और जब सलीलदा ने ये धुन शैलेंद्र को सुनाई तो अनायास ही शैलेंद्र के मुंह से ये बात निकली, हो बिछुआ। और आप सोचिए कि ये जो गाना है इसमें एक पूरी कहानी है, प्रॉपर एक कहानी आती है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये गाना फोक से आता है, पर सच ये है कि ये शैलेंद्र का रचा हुआ फोक सॉन्ग है। जिस तरह की पैकेजिंग, जिस तरह की इसमें पूरी एक कहानी चलती है, वो बहुत ही कमाल की बात है।
1: मंत्र फेरूं

और अब उस फिल्म की बात जो शैलेंद्र ने बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ एक और बात बताएं कि परख के सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि डायलॉग भी शैलेंद्र ने लिखे थे, और ये एक इकलौती फिल्म है जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे। बिमल रॉय की यूनिट के तमाम लोग खाली वक्त में गप्पे मारते थे, और इसमें नबिंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, रघुनाथ झालानी वगैरह होते थे। उसी दौर में मोहन राकेश ने एक किताब छापी थी, 5 लंबी कहानियां, इसमें एक कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनके मन में ये भूत चढ़ गया कि उन्हें तो ये फिल्म बनानी है। राज कपूर ने उन्हें ये समझाया कि देखो कविराज, ये आपके बस का काम नहीं है, फिल्म आप मुझे बनाने दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। पर शैलेंद्र नहीं माने और

में आराम से कर लेते, जो फीस वो लेते थे वो बहुत शानदार थी, तो वो जो भरपाई नुकसान की थी वो एक दो साल में कर लेते, लेकिन तब तक उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। तीसरी कसम के लिए उन्होंने एक बेमिसाल गाना लिखा था, उसको सुनते हैं।

गाइड के बाद जब ज्वेल थीफ बनाने की बारी आई थी तो ये तय हो गया था कि चूंकि गाइड में इतने अच्छे गाने लिखे हैं तो शैलेंद्र ही गाने लिखेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, शैलेंद्र तीसरी कसम बनाने के बाद डीप डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। विजय आनंद जब मिलने आते तो शैलेंद्र ये कहलवा देते कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन विजय आनंद ने एक ट्रिक सोची, उन्होंने लिंकिंग रोड पर गाड़ी बाहर ही छोड़ दी, पैदल आए, बेल बजाई और लगभग गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और कहा कि आप ये बताओ कि आप गाना क्यों नहीं लिख रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखो अब मेरा हौसला नहीं रहा है और मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिख पाऊंगा। एक ही गाना उन्होंने इस फिल्म का लिखा और उसके बाद बाकी गानों के लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम दिया और मजरूह सुल्तानपुरी ने बाकी गाने लिखे। लेकिन ये जो गाना है रुला के गया सपना मेरा, ये असल में शैलेंद्र ने हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये उनकी अपनी जिंदगी की निराशा की कहानी है। कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, हाय कि दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। इसको अगर आप शैलेंद्र पर फोकस करके देखें तो आपको लगेगा कि उनके दिल में यही चल रहा था और वो बहुत निराश थे और ये गाना उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये अपने लिए ज्यादा लिखा था उन्होंने।

0: ये शैलेंद्र का लिखा आखिरी गाना था और ये वो दौर था जब शैलेंद्र की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी और 14 दिसंबर 1966 को जब शैलेंद्र को एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो राज कपूर के घर के सामने से गुजरे और राज कपूर ने उन्हें आखिरी बार देखा और ये कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे कविराज और हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन 14 दिसंबर को शैलेंद्र ने अलविदा कह दिया। राज कपूर के जो बहुत ही अजीज लोग हैं वो इसी तरह से छूटते चले गए थे, जैसे मुकेश गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ चली गई, कविराज शैलेंद्र गए तो वो बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे। केवल 43 बरस की जिंदगी, 17 साल का करियर और ये तो एक घंटे का प्रोग्राम है, पर अमूमन में शैलेंद्र के गानों की जो कहानियां हैं वो 3 घंटे तक सुनाता हूं। आज की ये महफिल इतनी ही, जाहिर है कि बहुत बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी और कहानियां कही जा सकती हैं। 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं। एक ऐसा गीतकार जिसने हमारी जिंदगी के बहुत सुनहरे पलों को बांटा है, हम विविध भारती परिवार की ओर से शैलेंद्र को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज का सृजन भारती कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय ब्रह्मात्मक जी क्या कहते हैं।
2: शैलेंद्र के यहाँ लोग बहुत स्ट्रॉन्गली

0: आया हुआ है, चाहे वो लोकगीत की परंपरा हो, किस्से कहानियां हो, उसके अलावा भक्ति काव्य की निर्गुण परंपरा, सगुण परंपरा से नहीं लेते हैं वो, निर्गुण परंपरा से चीजें लेते हैं। अध्यात्म बहुत है उनके कविताओं में, उनके गीतों में, सब जगह है। जो 26 साल से पहले की उनकी उम्र है, जहाँ उनका शैशव है, जहाँ उनकी जवानी है, जहाँ वो काम करते हैं रेलवे में, 8 साल मशीन के तानपुरे के साथ में कविता करता रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, उन्होंने खुद लिखा है। तो मशीन का तानपुरा, ये शिमली अपने आप में कैसी लगती है। और ये उनके टीचर ने कभी कहा था, जब वो मथुरा छोड़ के आ रहे थे इधर, तब उन्होंने कहा, क्या तुम अब मशीनों को सुन के गीत लिखोगे? उनके सारे गीत चरित्रों के हिसाब से लिखे गए हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से लिखे गए हैं, और गीत संवादों का काम करते हैं।
2: लीजिए, प्रस्तुत है जानी मानी गायिका दीपाली सहाय के विचार गीतकार शैलेंद्र के बारे में।
3: शैलेंद्र के प्रेम में कोई गायक या गायिका नहीं है जो उनके प्रेम में नहीं है। और हम प्रेम शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सिंगिंग में धुन बनाना और गाना लिखना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, पर ये उनका जो सपना है, धुन बनाने वाले का और गाने लिखने वाले का जो सपना है, वो पूरा करता है एक गायक या गायिका। और जब तक कि हम लोग उस सपने को समझेंगे नहीं, हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और शैलेंद्र हर सिंगर के लिए वो इंस्पिरेशन है। और मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है कि धुन बनाने से ज़्यादा कठिन है उस सिचुएशन पर कुछ लिख देना। क्योंकि आप अगर देखिए, आज अगर तेरे पास में हिट है तो वो उसके शब्दों की वजह से लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास, सिंपल सी भाषा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब लिरिक्स अगर नहीं हो गाने में और उसमें कुछ संदेश नहीं हो, हर कोई संगीत नहीं समझ सकता है, पर भाषा के आते ही उसको एक मतलब मिल जाता है। और वो मतलब लेकर आते हैं हमारे लिए शैलेंद्र। और हम क्योंकि बिहार से हैं और हम बहुत छोटे थे जब हम उनके लिखे गाने सुनते थे, और फिर बड़े हुए और भोजपुरी के उनके गाने हमने भी कवर किए उनके गाने, तो शैलेंद्र के लिए मेरे अंदर जो है वो मेरे लिए बोल पाना नहीं होगा आसान। हम गा के ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल।
3: एक गाना जो बहुत दिल के मेरे करीब

0: दोस्तों, सृजन भारती का ये अंक केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। लीजिए, अब प्रस्तुत है दर्शकों के बीच उपस्थित गीतकार डॉक्टर सागर के विचार।
1: शैलेंद्र मेरे लिए एक हैरत की दुनिया है। मैं हैरत इसलिए बोल रहा हूँ कि शैलेंद्र का जन्म हुआ रावलपिंडी पाकिस्तान में, और वहाँ से वो आ जाते हैं मथुरा, जिस कविराज की अपब्रिंगिंग ब्रज भाषा की है। और ये हैरत नहीं तो और क्या है कि चलत मुसाफिर मोहली, अरे पिंजरे वाली मुनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया।
2: क्या बात है।
1: और शैलेंद्र

0: तरह रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, ब्रजभाषा में बड़े हो रहे हैं, पैदा पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो उनका रूट है आरा का, वो किस तरह से शायद उनकी माँ बोलती होंगी वो भाषा और माँ से वो जबान आई होगी,
1: उनके घर में बोली जाती थी।
0: शैलेंद्र, बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी,
1: बाबा
0: कहीं बाज की तरह भी होते हैं और पपीहा और कभी कबूतर हो जाते हैं, वो इतने विविध रंग हैं। शैलेंद्र मेरे लिए एक हैरत की दुनिया है, तो मैं इसी के साथ बात खत्म करता हूँ।
2: तो ये थी सृजन भारती के अंतर्गत शैलेंद्र के 103 बरस होने पर।
3: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का।
4: ये महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार

0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाज़ें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बपी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है। सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया। खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने में समोए हुए होते हैं। मुझे खत लिखना बेहद पसंद था है, और मुझे खत के जवाब में इंतज़ार में भी मज़ा आता था। खत किसी का होता था, बुआ का होता था, जब बच्चे बाहर पढ़ते थे तो उनके खत की राह देख रही होती थी, पर वो रोमांच आजकल मैसेज के रिप्लाई आने पर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। तो ज़रा बताइए कि आप में से कौन आज भी पत्र लिखते हैं और किसके लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की फेहरिस्त लिखिए, पुकार लो, तुम्हारा इंतज़ार और वो तेरे प्यार का गम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कैसे समझाऊं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे श्रोताओं ने गानों की लिस्ट भेजी है, और सच कहें तो आज हम आपके गानों को ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तेरा खत ले के सनम पाँव कहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की पसंद एक है आज। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुरानी किताबों के कभी पन्ने पलटते समय अनायास ही सूखा गुलाब का फूल नज़र आने पर उसे कभी फेंकने का मन नहीं होता, आज भी वैसा ही रखा रहता है और बीते हुए पलों की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है। सूखे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाती नहीं बल्कि महकती हुई आँखों में उतर आती हैं। ये बताइए हमें कि क्या कभी आपने भी पत्र के साथ गुलाब का फूल भेजा था? अगर भेजा है तो वो लम्हा याद कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमें गुलाब और कली फूल वाला गाना भी सुझाइए कि कौन कोई ऐसा गाना है जिसमें गुलाब शब्द आता है या कोई फूल के नाम आते हैं, वो भी आप सुझा सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, माफ़ कीजिएगा सूरज फिल्म का ये गाना, और बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है, खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली, कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल केसरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे। क्या तितली पकड़ में आती थी? वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है, सब लोग अपने अपने ज़माने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे ज़रा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा, क्या बात है। हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं, ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो ज़रा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ न होना। एक श्रोत और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के ज़माने में भी। तो ज़रा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं। अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को? याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज थी और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में घुल मिल गए हैं, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियां तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबू में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है, कितना भी समय बीत जाए खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधले नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे, तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई, लेकिन अभी हम आपको कागज़ के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

सुन रहे थे आप कागज के फूल फिल्म का गाना, और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, गुरुदत्त और वहीदा रहमान। श्रोताओं ने सही बताया है और गीता दत्त की आवाज थी, ये बहुत कम लोगों ने बताया। गीतकार का नाम भी श्रोताओं ने बूझा नहीं, कैफी आजमी थे। और अब अगली पहली बूझिएगा, फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, उन्हें हाथ से छूने भर से वो पल वो समय नज़र के सामने छा जाते हैं, होठों पर खुशी छा जाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूल तुम्हें मैं भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, खत में भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता नहीं मालूम। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए। और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तितली को पकड़ना नहीं पर हाँ तितली से प्यार तो है, हमें रंग बिरंगी तितलियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, जब वो फूल पर आकर बैठती हैं तो हम उसे निहारते ज़रूर हैं और खुशी इस बात की होती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश फूलों के पौधे लगाने से इन्हीं नन्ही तितलियों को भोजन मिलता है। बस शायद इसीलिए ही हमें फूलों और पौधों से प्यार है कि वो सदा हमें देते ही हैं खुशी, कभी हमसे कुछ लेते नहीं। क्या बात है भाई। चलिए अब आगे बढ़ें, और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट। सुनिए और बताइए कौन है कलाकार, कौन हीरो, कौन हीरोइन। चाहे तो आप गीतकार का नाम भी पूछ सकते हैं, संगीतकार का नाम भी। फिल्म पेइंग गेस्ट।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बच गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप इबारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं, और तब तक आपकी टिप्पणी आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था, बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये, तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे हेमंत कुमार का संगीत था, और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतज़ार है, कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि ख़त में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा, क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज़ खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है, और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहाँ तितलियाँ बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है, और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताज़ा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक ये।

आए हमारे श्रोताओं की ओर से। इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफ़र, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट, ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज़ थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था इस गाने का जिक्र किया था वो गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए और ज़रा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

0: पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही बूझा। और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, अक्सर आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये
1: आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi embarks on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has embarked for his two-day visit to Uzbekistan today. The Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. During the visit, both the leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said, in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said he's looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital technology, defence, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said that he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Centre at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. Let's go directly to our correspondent Sushil Chandra Tiwari in Tashkent to get more details about the visit. Sushil, what are the preparations to welcome the Prime Minister and how is the atmosphere there?
2: Well, Shagun, huge preparations are underway to welcome Prime Minister Narendra Modi here. Indian flags are flying everywhere in Tashkent, which is the capital of Uzbekistan. The hotel where the Prime Minister will stay also has the tricolor flag flying everywhere. Later in the evening, the Prime Minister will receive a traditional welcome from both Indian and Uzbek people. We know that the relationship between India and Uzbekistan is very friendly. It goes centuries back. And the people here are fan of Indian films, film stars, Indian songs. And this will definitely be reflected in the welcome ceremony. Shagun?
1: All right, Sushil, thank you. On the second leg of his two-nation visit, Prime Minister Modi will visit the Kyrgyz Republic. In his departure statement, Mr. Modi said that at the invitation of President of the Kyrgyz Republic, Sadir Japarov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in neighbourhood and beyond. The Prime Minister said that during his visit to the Kyrgyz Republic, he will also meet President Japarov and also other SCO leaders and will attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games. Well, another question for Sushil. What is the agenda of the visit, Sushil, and the areas in which discussions will take place during the Prime Minister's visit?
2: Shagun, this is Prime Minister Narendra Modi's fourth visit to this Central Asian country. During the visit, Prime Minister will hold delegation level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The two leaders will review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people domains and set the agenda for the road ahead. Connectivity actually is a major hurdle for the trade between the two countries, and deliberations will take place on this issue also. Both leaders will share perspectives on advancing the shared development visions of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Shagun?
1: Well, thank you, Sushil, for those details. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626 this morning, with over 2,000 people remain missing. Police had recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Gorkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Dhading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Additionally, the search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate relief operations. The Minister of External Affairs yesterday said 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi, Mr. Jaiswal said 63 Indian nationals working at Trishuli One hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal said that on the Chinese side, around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. The facility has been set up to coordinate rescue, relief and tracking efforts for Indian nationals affected by the disaster. Citizens seeking information or assistance can contact the MEA control room via telephone +91 11 2308 8718. +91 11 2308 8719, +91 11 2301 2113, or WhatsApp +91 9968 291988, or email situationroom@mea.gov.in. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told media that India is supporting Nepal in ongoing relief and rescue efforts. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju will be leading the Indian delegation for the high-level commemorative meeting in Belgrade, Serbia from 31st of this month till 1st of September. The theme for the meeting is the legacy of non-alignment, lessons for today's world. The External Affairs Ministry in a statement said that the meeting marks the 65th anniversary of the first conference of head of state or head of government of the non-aligned movement. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. US President Donald Trump has announced the biggest oil deal with Venezuela. The landmark agreement with Venezuela will give the US majority control over more than 65 billion barrels of proven crude oil reserves. He said the agreement was secured at no cost to the American taxpayer and will more than double total American oil reserves. The US administration claims the massive influx to the US oil supply will drive down domestic gasoline prices long term while putting Venezuela's economy on a path toward economic recovery. The announcement comes following months of intense US diplomatic pressure, sanctions enforcement, and direct oversight of Venezuelan oil exports. Iranian President Masoud Pezeshkian has said that Tehran is open to negotiations with the United States but remains cautious about Washington. He said Iran would honor its commitments if the U.S. also upheld its side of the agreement. In a TV interview, Pezeshkian said diplomatic efforts could focus on reviving the June peace memorandum of understanding. He noted that Iran had exported nearly 90 million barrels of oil while the agreement was being implemented. Pezeshkian's comments came as Iran continues to grapple with economic pressures at home. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Central Warehousing Corporation, or CWC, has successfully dispatched the second Onion Express of the season from Nashik, Maharashtra to Chennai, Tamil Nadu. In a social media post, CWC said the initiative will further strengthen the supply chain and ensure the timely availability of onions across markets. National Sports Day is being celebrated across the country today to commemorate the birth anniversary of one of India's greatest sporting icons, Major Dhyanchand. The day celebrates India's rich sporting heritage and encourages people to make sports a regular part of their daily lives. More from our correspondent.
3: National Sports Day 2026 is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of tribute, play and move. This year, National Sports Day is being celebrated under the call Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein. Various in Delhi Union Ministers Dr. Mansukh Mandviya and Arjun Ram Meghwal participated in a cricket match under the campaign. Talking to media, Dr. Mandviya called upon people to spend at least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
4: Aaj National Sports Day ke avsar par.
5: The occasion of National Sports Day, a one-hour sports activity has been organized across the country to promote the Fit India movement. Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
4: मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा.
3: Mr. Meghwal said he plays badminton every day. He said sports help people remain healthy and fit and also help in keeping stress away. The government has been making sustained investments in India's sporting ecosystem with the results increasingly visible on the global stage. India's performances at major international sporting events reflect the country's growing strength across Olympic, Paralympic and multi-sport disciplines. India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyanchand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said Major Dhyanchand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The Finance Minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic. says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
6: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
6: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
7: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
6: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
8: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-8495। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
6: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
9: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
6: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
10: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
6: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
11: श्री पेजेस्कियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेस्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
6: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
12: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
13: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
14: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
13: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज फिल्म 14वीं का चांद।

14वीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी है और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

ढूंढो ढूंढो रे साजना मुरे कान का बाला, और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र, और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुना दूँ आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्रगण। बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार। नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश भेजी है लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं, ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों, हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं की भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तू रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सकें। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तुआ। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर्स से, और हमारे ये श्रोता हैं छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

0: सुनाए।
1: जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में, शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से, और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखो, क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: तो क्या मेरी कमीज, मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू? हैं हैं,
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं।
3: मिल गया।
2: देखो ये अखबार, चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे?
2: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता, आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है? हाँ
2: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
3: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
2: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
3: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
2: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
3: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
2: क्या कहा तुमने, तुमने मुझे रावण कहा?
3: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इंसान को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है, अखबार पढ़ेंगे। पढ़ो बैठ कर अखबार।
2: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
3: अरे क्या है, क्या है?
2: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
3: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
2: फुर्सत नहीं क्यों, रसोई में तुम क्या धो रही थी?
3: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
2: क्या कहा तुमने?
3: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
2: चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
3: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
2: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
3: क्या
2: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
3: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
2: भूल गई खाना खाना? नहीं भूली। अरे रामू का तो बहाना है बहाना।
3: अब करना क्या है वो बोलो।
2: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
3: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
2: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
3: हाँ जी, गलती हो गई। बस
2: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
3: तो गलती सुधार लो।
2: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
3: बस बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
2: साफ सफाई? साफ सफाई कौन करे, मैं करूं?
3: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
2: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
3: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
2: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
3: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करना करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
2: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
3: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
2: सौ
3: इधर,
2: की
3: कभी
2: सीधी
3: उधर।
2: एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
3: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
2: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
3: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
2: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
3: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
2: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट कूपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
3: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
2: अब रहने दो, रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
3: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
2: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
3: चप्पल टूट गई है।
2: टूट गई? किसने तोड़ी?
3: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
2: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
3: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं, क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
2: उफो, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने दो, जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
3: वो
2: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
3: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो।
2: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
3: कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे।
2: अरे भाई इसके फीते कहाँ गए भाई?
3: ओहो, अब मुझे क्या मालूम,
2: कल तो थे ना।
3: चूहा ले गया होगा।
2: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
3: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो? तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
2: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
3: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
2: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना। मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
3: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
2: मैं कहता हूँ चुप बैठो, नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
3: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
2: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
3: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
2: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
3: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
2: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा, बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
3: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
2: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पकपक है।
3: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
2: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
3: अरे शादी के पहले तो कहते थे। रेखा, तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
2: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
3: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
2: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
3: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
2: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया, मर गया। चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो।
3: देखो मेरे कपड़े कपड़े वपड़े तो ठीक है ना?
2: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है? वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
3: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
2: मैं जा रहा हूं।
4: मौसी, मौसी, मौसी कहाँ हो तुम? मौसी,
2: हाँ। अरे भाई मैं हूँ, मैं हूँ।
4: मौसी जी आप? हाँ हाँ हाँ। Thank God, मुझे लगा कोई मोहली पीछे पड़ा है।
2: भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
4: महोदय जी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
2: वो क्यों?
4: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
2: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
4: मौसी कहाँ है लेकिन?
2: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
4: आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
2: अभी अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतने जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
4: मौसी का है बताइए ना।
2: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
4: मौसा जी, ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं? अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
2: ओ हो हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो? मैं समझा मेरी मौसी।
4: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
2: Then you should not marry, because marriage is a biggest joke.
4: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
2: घर में झगड़ा कर आई हो?
4: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
2: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
4: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
2: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
4: enough. बहुत सुन लिया आपका मैंने।
2: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
4: घर मेरी मौसी का है।
2: और तुम्हारी मौसी मेरी है।
4: ऐसा आप समझते हैं?
2: क्या मतलब?
4: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
2: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
4: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
2: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
4: मौसा जी,
2: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
4: नहीं।
2: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे।
4: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
2: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
4: हाँ, लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
2: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
4: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
2: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
4: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
2: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
4: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
2: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
4: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
2: किसके बारे में?
4: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
2: क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
4: प्यार? माय फुट? नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
2: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
4: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी, और असल में काम वाली ही समझते हो ना? सभी मर्द अहंकारी होते, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बस चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
2: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे
3: रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? अरे लीना, तुम क्या हुआ?
2: अरे इस लीना पर माताजी आई है।
3: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
2: इस पर पिताजी आए हैं।
3: तुम कब आई लीना?
4: अभी थोड़ी देर पहले।
3: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
4: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
3: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना।
4: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
3: क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
3: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
4: पति? गधा है गधा।
2: मालूम होता है लात खाकर आई है।
3: तुम बीच में ना बोलो जी।
2: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना। अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पली पहन कर चला जाता हूँ।
3: अरे अरे ये क्या पागलपन है,
2: थोड़ी छोटी होती है बस।
4: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
2: गुलाब जामुन, रस मलाई
4: मुझे नहीं खानी।
3: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
2: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
3: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावले हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
2: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
3: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
2: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
3: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
2: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
3: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
4: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो। जाओ ना।
3: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
4: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
2: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोल देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
5: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
4: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
5: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यहीं होगी।
4: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम
3: लीना, तुम होश में तो हो? ये क्या बोल रही हो?
4: गेट आउट, आई से गेट आउट।
5: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
4: ये लोग कोई पराए नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
2: चलो ये वीरन के जूते ही डाले लेता हूँ।
3: ये तो क्या कर रहे हो?
2: ये बूट, बूट, बूट।
5: ये बूट तो मेरे हैं।
2: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
3: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है।
5: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
4: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
5: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
4: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
3: लीना, वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों यूं?
5: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग, ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
6: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
5: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
6: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
5: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
6: क्या बोलूं?
5: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
6: ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, हम बाग में बैठे।
5: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
6: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
7: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा?
5: नो,
7: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
5: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
5: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
6: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
5: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
6: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
5: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले, तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
7: हाँ क्यों?
5: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
7: कितने का दूं बाबूजी?
5: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
7: वहाँ बैठने का 10 रुपया?
5: हाँ हाँ।
7: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
5: नॉनसेंस। चलो किसी होटल में चलते हैं।
6: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
5: ऑल राइट, एज यू विश।
8: माफ कीजिएगा।

0: कहूं किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूं, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूं।
2: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
2: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
2: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वह अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
2: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
1: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू। डार्लिंग, तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
2: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: नहीं।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे?

0: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
0: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
0: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
0: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
0: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
0: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
0: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
0: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
3: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
2: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास कहाँ होगा।
2: अब कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
4: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कांगड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने विनाशकारी बाढ़ में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजेश्कियन ने कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री जेशकेन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। एक अलग संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों तथा बाजार के प्रबंधन सहित आर्थिक और जनजीवन से जुड़ी चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने आज प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने भारत क्यों, अभी क्यों रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। श्री मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का।
3: आवाज तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहाँ से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
4: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
3: जी।
4: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था
3: जी, बिल्कुल। आई थिंक हम सिक्स्थ क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
4: सिक्स्थ क्लास में पैर वैर पहुंच रहे थे गियर
3: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
4: भाग जाएगी
3: चाबी चुरा के,
4: एक्सीडेंट का डर नहीं।
3: हाँ, तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
4: अरे भगवान,
3: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे।
4: हाँ।
3: फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम सिक्स्थ में ही, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं। पता नहीं क्यों था, मैं
4: गाड़ी मतलब
3: फोर व्हीलर
4: प्रॉपर वो तो, लाल बत्ती वाली
3: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन हाँ, में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज़ पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
4: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
3: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
4: तो पैर पहुंचने
3: हाँ, क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो अबाई सिक्स से लेके एट नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, काफ़ी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज़्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
4: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
3: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
4: एजुकेशन पे फोकस
3: है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था, अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे और हमको बचपन से ये मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर तो
4: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
3: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट

0: बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके. तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक. एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स. क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक. और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहाँ भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे. पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ.
1: बहुत ही रेपुटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है. माँ ने मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के ज़माने में जिस लड़की का बायोडाटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे.
1: मतलब इतनी काबिल है वो.
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे. और वहाँ से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है.
0: नहीं है, नहीं.
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां.
0: करेक्ट. तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है. और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स. और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्य और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के. आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो. ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है क्योंकि हाँ. इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये.
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो, जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.

0: दीपाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक सीएसआर हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा ज़माना जब आया, जब हम सेवेंथ एट्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहाँ सुन रहा है, वहाँ नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज़ बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। अच्छा, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में, यू नो, आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया, ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफ़ी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है। तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है, चलो, माफ़ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ़ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे। हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं।
0: मेरे माँ बाप को 12th
1: के एग्जाम के दौरान,
0: वेरी गुड।
1: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
0: बीच में गैप्स होते हैं,
1: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
0: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहाँ आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहाँ के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
1: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोस देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल्दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में ये था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा। अंग्रेजी इसको कैसे आती है। और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए। वो स्ट्रगल मेरे लिए ज़्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
0: अच्छा,
1: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं।
0: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
1: आ रहा है, इतना बड़ा। और वो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, पर वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
0: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है।
1: करेक्ट,
0: बाकी तमाम चीज़ें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
1: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज़ पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज़ है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहाँ तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
0: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
1: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
1: तो
0: बहुत बड़ी बात है
1: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको।
0: अच्छा,
1: अब तो आउट हो चुके हैं।
0: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने।
1: हाँ।
0: और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
1: राइट,
0: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता है। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
1: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
0: अरे भगवान,
1: कि हम तो इनके जैसे ना, मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम करके बात करते हैं तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
0: ये भी मान चुकी
1: ये थी। भी माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
0: अरे बाप,
1: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है।
0: ये ख्याल कहां से आया था?
1: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर।
0: हे भगवान,
1: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
0: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
1: बताइए, बेटी बिचवा।
0: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिकारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है।
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात कर रहे हैं,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: तो ये हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती हैं कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
0: ख्वाब होता है,
1: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
0: वो भी
1: वो
0: एक
1: है
0: होता
1: जीवन
0: है।
1: जीवन वो है,
0: बिल्कुल,
1: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
0: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
1: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट,
0: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
1: पूरी
0: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
1: और
0: था।
1: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम। रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता
0: तो
1: नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी वो बहुत कड़क थी।
0: अपनी कमजोरी दुनिया के सामने
1: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
0: हाँ।
1: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
0: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
1: अंदर तो तूफान,
0: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है।
1: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
0: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
1: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
0: आपको लगा नहीं था कि ये होगा, कि एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने।
1: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
0: हाँ।
1: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है। हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो कर रही हैं जो उनको करना है, पर जो वो कह रही हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
0: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
1: जी,
0: वहां से लौटने के बाद,
1: हाँ,
0: मन का बांध टूटा
1: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
0: अच्छा, पहले ये तस्दीक
1: पहले
0: हो गई।
1: था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
0: अब नहीं
1: स्टूडियो
0: है।
1: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता
0: था,
1: कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा हो, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
0: और कौन था जो संभाल रहा था?
1: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
0: मतलब
1: हम दुखी
0: हैं। अकेले कमरे में
1: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
0: गजब।
1: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे। वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं। सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
0: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
1: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया, कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
0: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें।
1: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो दो तीन महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, एक साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, ट्वेल्थ के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
0: वो नहीं किया,
1: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
0: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
1: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
0: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
1: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है, सब मुड़ के देखते हैं, ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
0: कलाकार है
1: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है, क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
0: वो पर्दे के पीछे है,
1: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
0: और वो ओझल है,
1: वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
0: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
1: जी।
0: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
1: सबका,
0: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान होता
1: है, सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
0: हाँ,
1: 2-3 साल के अंतर पर
0: है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
1: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चल

0: होती हैं?
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वहीं होती थी और स्माइल के साथ वहीं रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको। हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है। हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है। मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे। तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था। हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन की बात चल रही है।
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज़ से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो। तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज। कोशिश करते हैं।

0: क्या बात है, मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है, मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाश शिवानी के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ ही हमारी आज की पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। FM 100.2 MHz पर ये आकाश शिवानी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज शाम 6 बजे से आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को लेकर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे विक्रम पांडे। तब तक के लिए मुझे यानी मीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। हम सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं आज की दूसरी सभा में।

श्रोताओं, आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ समय बाद यानी कि 6:05 पर पेश करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत मार कार्यक्रम। आज मार कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार होंगे जेनी खोबोंग और उनके साथी। जेमी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे कुछ जेमी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे हाईराम जेमे। समय रहेगा 6:25। 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे सोंदियार आंचलिक बातोरी।

श्रोताओं, 7 बजे का समय रहेगा डिमासा कार्यक्रम का। आज डिमासा कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले पाएंगे डिमासा लोकगीतों का गोपीनाथ हाफलुंबार की आवाज में। 7:20 का समय रहेगा कार्बी कार्यक्रम का। आज कार्बी कार्यक्रम के तहत आपको सुनवाएंगे सोनिका मिलिकपी और उनके साथ ही कुछ कार्बी आधुनिक गीत। 7:40 पर आप सुन पाएंगे हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की

की पेशकश यानी कि कुकी कार्यक्रम। आज कुकी कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे कुकी पारंपरिक गीत, गायक कलाकार होंगे पाउ खोजोन, संगीत और उनके साथी।

श्रोताओं, 8 बजे का समय रहेगा हमारे किसान श्रोताओं के कार्यक्रम किसान वाणी का। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या।

श्रोताओं, आज दिन है शनिवार, तो 9 बजे आप सुन पाएंगे आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगी रीनी देव, और 9:30 का समय रहेगा चित्र गीत कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: কপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল আমাৰ বিকাশ।
1: FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज के इस सभा की शुरुआत करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत मार कार्यक्रम से। आनंद लीजिए कुछ मार आधुनिक गीतों का जेनु खुबुंग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ मार कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। आज मार कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको सुनवाया जेनी खोबुंग और उनके साथियों की आवाज़ में कुछ मार आधुनिक गीत।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं अब समय हो चुका है जेमी कार्यक्रम का, आनंद लीजिए कुछ जेमी लोकगीतों का हाईराम जेमी की आवाज़ में।

Teune haimen sau pe zemingai zeile seu.

Bamze kumley ameray lenege siya begala tseulam.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जेमी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना जेमी लोकगीत हायराम जेमी और उनके साथियों की आवाज़ में FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से सौंदर्य आंचलिक बातोरी।

아닉 내장 투리 샤 소르낭 몸.

Aishrinya tika po shibuman.

Ya đúng rồi, khá lâu Ya lăng ba răng. Ai lăng

아야우 샤라비싱 가지종 아야우 샤라레바케 다세엘링 아야우 샤라비싱 하주디종

爱自己的啥啦？写一排版，写的啥啦？写排版。

长老爹子下高松崖中。

এন্দ্র ফারে বাদি জাংজি খে বাউিং দাং হিং।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चुका है कार्वी कार्यक्रम का। आनंद लीजिए कार्वी आधुनिक गीतों का सोनिका में लिखपी और उनके साथियों की आवाज में।

Quintolo, Calvonte pu Quintolo, Canção da Alma.

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ कुकी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं।
1: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। एन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग एन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दे, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दे।
0: FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चुका है हमारे किसान श्रोताओं के कार्यक्रम किसान वाणी का,

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा विशेष कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। श्रोताओं, पिछले शनिवार हमने अपने विशेष कार्यक्रम में साइबर क्राइम और डिजिटल सेफ्टी विषय पर चर्चा शुरू की थी, जहां हमने जाना कि कैसे हम बच्चों को सेफ इंटरनेट यूज करने की अवेयरनेस दे सकते हैं और सोशल मीडिया चलाते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस कार्यक्रम को हम समय की पाबंदी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए आज मैं फिर से एक बार मौजूद हूँ आपके साथ इसी कार्यक्रम के दूसरे भाग को लेकर। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम के शिकार होने पे आप कैसे उससे निकल सकते हैं और कई चीजें डिजिटल डिसिप्लिन से जुड़ी हुई। हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डीमा हसाओ कालाचांद के सीनियर लेक्चरर सर अरूप देव। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर का स्वागत करते हुए। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: नमस्कार
0: सर। तो हमने काफी बातचीत किया है इंटरनेट की अवेयरनेस को लेकर। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल जैसे बच्चे सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया यूज करते वक्त उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है?
1: एक्चुअली बच्चा लोगों को 15 प्लस व 16 प्लस होने से अपना हमारा यहाँ एक अकाउंट खुलने का प्रावधान है
0: जी।
1: तो पेरेंट्स लोगों को और टीचर्स को ये हमारा अनुरोध है कि उन लोग भी कोई बच्चा को कोई अकाउंट सोशल मीडिया अगर अकाउंट खुल के देना वो किसी पेरेंट्स का गाइडेंस में खुलने से बेहतर है। फिर भी अगर कोई अपना ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत सा बच्चा चला रहा है तो उसमें आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रावधान है। तो इसमें मेजर जो आता है कि अकाउंट प्राइवेसी, आपको अपना अकाउंट को कैसा उसको सेव करके रखे, इजी एक्सेस ना दे बच्चा को, कोई आदमी आके आपको अकाउंट को इजी एक्सेस नहीं देना चाहिए। तो उसको लिए पहला चीज है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए
0: जी।
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल ये है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वो रखना चाहिए। अगर किसी ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेट एवरी डिवाइसेस में बाय एवरी सोशल मीडिया ऐप में आजकल ये प्रोवाइडेड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई अगर आपका अकाउंट हैक करने का कोशिश कर रहा है, कोई आपको यूज करना कोशिश कर रहा है, तो आपको पास तुरंत वो मैसेज आ जाता है। तो वो एक्टिव करके रखना बहुत ही जरूरी है
0: जी सर।
1: देन आपको जो प्रोफाइल है इसमें प्राइवेसी को जो सेक्शन है उसमें जाके वो आपको सेट अच्छा से करना चाहिए क्योंकि जो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे वो कौन आदमी देख रहा है बा किसने देखा उसको आप रेस्ट्रिक्शन करने से अच्छा है। अगर सभी के लिए ओपन होगा तो आपको वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा साइबर क्राइम के लिए। देन आपको ऐसा भी फोटोज एंड पोस्ट टैग करना नहीं चाहिए जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स शेयरिंग हो। अगर आपने किसी ने पोस्ट कर लिया, अगर वो पिक्चर से आपको पर्सनल डिटेल्स ट्रेल्स कर सकता है, तो इसलिए ये जितना सके आप कम करिए सो देट कि जो साइबर क्राइम करना चाहता है परपेट्रेटर वो आपको आइडेंटिफाई कर नहीं पाए आप कहाँ से हो क्या नहीं। देन आपको ये भी है कि आपका एड्रेस फोन नंबर वो सब देना नहीं चाहिए, ऊपर में उस रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ओनली ट्रस्टेड पर्सन जो आप पर्सनली जानते हो उसी का अकाउंट है तो उसी को शेयर करना चाहिए। देन कनेक्शन फ्रेंड रिक्वेस्ट आने से सबका भी वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, कभी कभी ये फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, इसको हम लोग इम्पर्सनेशन कहते हैं। जो व्यक्ति है शायद वो व्यक्ति वो नहीं भी हो सकता है, शायद वो व्यक्ति आपके साथ एक लड़का होकर बात कर रहा है, मे बी वो लड़की हो सकता है, मे बी वो एनीथिंग हो सकता है, वो एक एजेड पर्सन भी हो सकता है लेकिन आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है। तो इससे हम लोग को बचना चाहिए एंड पिसिंग से भी बचना चाहिए। पिसिंग हो गया कि आपको मोबाइल में कभी आप लोग देखते होंगे कोई लिंक आ जाता है बा कोई अटैचमेंट आ जाता है, तो लिंक एंड अटैचमेंट में टच करना नहीं चाहिए बा क्लिक करना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप उससे विश्वास करते हो बा किसी ने आपको ट्रस्टेड आदमी ने भेजा तभी आप करिए। एंड कभी कभी आप सर्फिंग करने में आपको ये देखना चाहिए कि जो सर्फ कर रहा है उसका URL एड्रेस सही है कि नहीं। कभी कभी URL एड्रेस देखने में सेम ही होता, जस्ट एक ERI का फर्क हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा कभी आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है, ये भी देखना चाहिए। देन आपको लोकेशंस को हमेशा हाइड करके रखने से अच्छा है लोकेशन, तो बिकॉज आपका लोकेशन ही आपको बताता है आपका मूवमेंट, एवरी मूवमेंट, आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं ये सारा। देन मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ हम कैसा रखें। स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ के लिए भी अगर ज़्यादा हम स्क्रीन टाइम हो गया तो मेरा तो इसको मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाता है, किस किस को मेमोरी लॉस है, जिसको स्पान ऑफ अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। और एक यह है कि बुलिंग होता है इंटरनेट में, तो बुलिंग होने के बाद में कभी कभी बच्चा खुद को सेल्फ हार्म भी कर देता है, एंड कभी कभी वो व्यक्ति जो उसको बुलिंग कर रहा है वो उसको देके अनवांटेड काम भी करा सकता है। तो इसी चीज़ में हम लोग को ध्यान देना चाहिए जनरली।
0: जी सर, तो आपने बहुत अच्छे से बताया है सर कि सोशल मीडिया चलाते वक्त हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। सर, तो अभी जैसे आपने हमें पहले बता दिया है थोड़ा सा कि जब बच्चे अगर ऐसे साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो कैसा क्या करना चाहिए और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं आपने बताया है। अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि जब कोई स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, फेक आईडी या साइबर बुलिंग जैसा सिचुएशन हो जाए तो उसे तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये केसेस हमेशा हो रहा है आजकल, ये केसेस ऑफन देखा जाता है हमारा समाज में। तो इसके लिए दो कैटागोरीज में हम आप इसके बारे में बात करेंगे। पहला हो गया आपका फाइनेंशियल जो फ्रॉडलेंट होता है उसको, एंड देन ऑनलाइन जो साइबर क्राइम होता है उसको बाद में। पहला जो है आपको इविडेंस, जब आपको कोई भी साइबर क्राइम हो, सपोज आपको आपको बैंकिंग में फाइनेंशियल फ्रॉड हो आपका साथ बैंकिंग में, तो उसको लिए आपको क्या करना चाहिए, पहला मैं वो बताना चाहूँगी। तो पहला है कि जब भी आपको वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो इमीडिएटली आपको उस बैंक में कांटेक्ट करें, उसको अकाउंट को क्लोज कराइए, देन एक ट्रांजेक्शन आईडी और सब वगैरह आप रिकॉर्ड रखिए, एंड तुरंत कॉल कीजिए 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन। 1930 जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन है, उसमें जब आप कंप्लेन करेंगे तब उसको पहले ही आपको ट्रांजेक्शन आईडी, बेनिफिशियरी डिटेल्स वो सब आपको पूछेंगे, तो इसको लिए वहाँ में आपको ये करें। देन आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करना है cybercrime.gov.in में। वहाँ में अगर जाइए उस वेब पेज में जाके आप ऑनलाइन फ्रॉड का बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन उसका बाद आप लोकल थाना में जाके, साइबर सेल होता है आजकल हर एक थाना में, तो उसमें जाके आप कोई FIR दे सकते हैं
0: जी।
1: ये इमीडिएट काम है आपको। अगर फेक आईडी एंड इम्पर्सनेशन को आप बात कर रहे हैं, तो फेक आईडी एंड इम्पर्सनेशन में क्या होता है, जब भी ऐसा कोई आए साथ ही साथ आप उस व्यक्ति जो इम्पर्सनेशन कर रहे हैं फेक आईडी आपका यूज कर रहा है, साथ ही साथ उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए
0: जी।
1: वो स्क्रीनशॉट आपको प्रूफ में काम आएगा लेटर स्टेज में। देन आपको सोशल प्लेटफॉर्म में एक रिपोर्ट सेक्शन है, आप जाके उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है बा रिमूवल करने के लिए, हर सोशल प्लेटफॉर्म में ये है। देन एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में। और साइबर बुलिंग, हेरासमेंट और थ्रेट के लिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि साथ ही साथ उस अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए एंड रिपोर्ट करना चाहिए। वो उसमें भी आप NCPR मतलब हो गया आपको नेशनल कस्टमर प्रिफरेंस रजिस्टर्ड, वहाँ में जाके आप फोन करके उस कॉलिंग नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप उस नंबर से कोई डिस्टर्बिंग मैसेज बार बार आ रहा है बा SMS आ रहा है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो ब्लॉक कर सकते हैं आप। देन आपको किसी ने थ्रेट दे दिया, एक्सटर्शन कर दिया, तो उसको लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं वो इस नेशनल साइबर क्राइम .gov.in में, वहाँ जाके आप लोग बा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके इसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। 1930 जो हेल्पलाइन है वो इमीडिएट ब्लॉकिंग वो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है ज़्यादातर, एंड cybercrime.gov.in जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है फॉर कंप्लेंट के लिए, मेंटल हेरासमेंट व दुर्सा और साइबर क्राइम के लिए।
0: सर, तो यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा आपके बताए हुए पॉइंट्स जो है। जी सर, जैसे हमने काफी बात किया है यहाँ पे जो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए अगर ये सब फेस करें हम लोग, क्या आपको लगता है कि स्कूल लेवल पर साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स या वर्कशॉप करवाना जरूरी है?
1: हाँ, बहुत ही जरूरी है, इससे स्टूडेंट का साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस होगा, उनको ये अवेयरनेस होगा कि हम कहाँ में जाके रिपोर्ट करें अगर मेरा साथ साइबर फ्रॉड हो गया
0: जी,
1: बा नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है, उन सब बारे में उन लोग को जागृति होगा, उन लोग को अवेयरनेस आएगा, तो ये इसलिए ये बहुत जरूरी है ये करना।
0: जी जी सर, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में हर चीज का एक डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, तो आजकल के डिजिटल युग में आपके हिसाब से डिजिटल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है?
1: हाँ, डिजिटल डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि डिजिटल डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स अपना अकाउंट्स व अपना सोशल मीडिया है उसको प्रोटेक्ट करने नहीं सकेगा। इसके लिए फर्स्ट है कि जैसा मैंने पहले ही बताया, उसको प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको बचाना है, ठीक है। देन फाइनेंशियल एंड सोशल हार्म को भी बचाना है, तो स्टूडेंट उसके बारे में पता चल जाएगा कि हमको कब कहाँ में बसना चाहिए व कहाँ से हमको ये सुविधा मिलेगा। एंड मीडिया लिटरेसी एक होना चाहिए, मीडिया लिटरेसी इन दैट सेंस कि स्टूडेंट्स को आजकल ये पता होना चाहिए कौन सा मिस इन्फॉर्मेशन है एंड कौन सा फेक इन्फॉर्मेशन है, एंड कहाँ में जाने से हमको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन बा कौन सोर्स में जाने से हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके ऊपर उनको एक ज्ञान होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है आज का दिन में स्टूडेंट के डिजिटल डिसिप्लिन के लिए।
0: जी जी सर, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, तो अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आप स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल सलाह देना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, वो तो खुद को बचाना एंड साइड बाई साइड इंटरनेट को सही तरह यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला जो है कि आप रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स एंड योर ओन प्राइवेसी, आपको दूसरे को प्राइवेसी को भी देखना चाहिए और खुद का प्राइवेसी को होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और रिपोर्ट करना चाहिए, कभी भी इल्लीगल अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको साथ साथ उसको रिपोर्ट करना चाहिए। एंड आपका खुद का नाम यूज़ नहीं करके दूसरा शॉर्ट नाम यूज़ करने से अच्छा रहेगा उसी हिसाब से, आप एक डुप्लीकेट नाम रखने से ठीक है, बात जितना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कम करने से अच्छा है। एंड एंटीवायरस अप टू डेट हमेशा आना चाहिए, और जो ट्रस्टेड सोर्स है वहाँ से सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। देन अगर वेब एड्रेस को आप अच्छा से देखना चाहिए कि ये वेब एड्रेस https://. ओके स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो आपको समझ जाइए कि ये बहुत ही सिक्योर्ड वेबसाइट है, अगर ये नहीं है तो समझिए कि ये इतना सिक्योर्ड नहीं है।
0: जी जी सर,
1: ये बहुत सारा है। एंड देन डिजिटल रेपुटेशन मैंने पहले भी बताया, माइंडफुली कैसा रिएक्ट करना चाहिए। एंड जब भी आपका काम हो जाता है आप लॉग आउट हो जाइए सोशल अकाउंट से, एंड आपका अगर डिवाइस में इंटरनेट का जरूरत नहीं है इंटरनेट काट के रखिए। वही
0: जी सर, ये बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के विषय के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं को हमारी जो बातचीत है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सर, हमें बहुत खुशी है आपने अपना कीमती समय हमें दिया, यहाँ पे आके हमसे इतनी सारी बातचीत शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद सभी को।
0: जी तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम से हमें ये समझने का अवसर मिला कि डिजिटल दुनिया जितनी उपयोगी है उतना ही जरूरी है उसका सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना। छोटी छोटी सावधानियां जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रखना, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करना,

स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना और ऑनलाइन एक्टिविटीज के प्रति सतर्क रहना हमें साइबर क्राइम से काफी हद तक सुरक्षित रख सकती है। हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी के लिए उपयोगी साबित होगी और साइबर अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेगी। हम हमारे अतिथि का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों और महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान और नए विषय के साथ। यूं ही देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टीचर्स प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत किया था अंकिता ने। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ समय बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
6: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
7: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन

0: दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेख सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन

0: के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र में।
2: आपके गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল আমাৰ বিকাশ।
1: FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आप समय हो चुका है आपके पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग का। आज इसे प्रस्तुत करेंगी रिनी देव।
2: नमस्कार दोस्तों, हेलो हाफ लॉन्ग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आज की होस्ट, आपकी दोस्त रिनी। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल।
3: हेलो हाफ लॉन्ग।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: मैं बात कर रहे हैं।
3: आपका नाम?
4: मेरा नाम दिनेश शर्मा है।
3: दिनेश शर्मा जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: महापते, महापते।
3: और गाने के बोल
4: आपका पसंद बता देगा, महापते की।
3: जी, धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: मैम नमस्ते। मैं रमेश भट्ट गोलाघाट आसाम से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए कैसे हैं आप।
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? तिरंगा
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप। गाने के बोल
1: इसे समझो ना रेशम को तार भैया।
0: जी।
1: मैं सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये गाना पहले आपको और मेरा मिसेस है श्रीमती रुनु पात्र, भाईकोन मुंडा अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंगती, कास्टिंग माली, अंजलि बसुमतारी, रामेश प्रजापति, पूरण वर्मा, भगवान सिंह परमार, प्रेमजीत चक्रवर्ती, सभी एफएम लिस्नर, मेरा साथी लिस्नर को डेडिकेट करता हूँ।
0: जी, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग
1: हेलो दीदी, कल
0: जी, बताइए आपका नाम। आपका नाम जी बताइए, कैसे हैं आप
1: जी हूँ मैम।
0: जी? बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप,
1: सूर्य
0: और गाने के बोल
1: बोले पायल बोले
0: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।
1: चूड़ी।

0: हेलो हाफलॉन्ग,
1: नमस्कार मैडम
0: नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी। और नरवानी हूँ, छत्तीसगढ़ से। गाना
0: नरवानी जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सुनूंगा, भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन। पूरे
0: जी
1: भारत में बड़े धूमधाम से बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधने के लिए आती हैं।
0: बिल्कुल
1: मिठाई खाने का भी मौसम है ये तो।
0: जी
1: मेरी 3 बहनें हैं और कई बार वो लोग नहीं आ पाती हैं
0: जी
1: तो यही कहती है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। चंबल की कसम का गीत है लता की आवाज में।
0: जी चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी बताइए कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, ड्यूटी पे हूँ मैडम। और
0: जी
1: यहाँ तो मौसम एकदम, आज तो उमस गर्मी किया है और धूप भी किया है, और
0: जी
1: ये मतलब कि इस टाइप का मौसम है मैडम। हवा चलता है तो बढ़िया लगता है। वही मतलब नर्सरी, जंगली नर्सरी के बीच में हूँ, छाया में
0: जी
1: खड़ा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। और आपको सबसे पहले रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीजा और गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए आज कौन सा
1: और
0: गीत सुनेंगे?
1: जी आज का पिक्चर बताता हूँ मैडम, आज का फिल्म बताता हूँ। फिल्म का नाम है अनपढ़। वो गाना है ना, रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, फिल्म का नाम है अनपढ़।
0: जी
1: और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी हाफलाइन में सभी लोगों को, आपके परिवार जन को, रिश्तेदारों को, अफिसियलियों को, आकाशवाणी हाफलाइन में सभी जो दोस्तों भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो फरवरी ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को डिलीट करना मैडम। इसका प्रसारण शनिवार रविवार को रात 9 बजे होगा, तो सुना दीजिएगा मैडम। धन्यवाद।
0: जी जी जी चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग,
1: जी नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बछोड़ा तहसील नागद जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ।
0: उज्जैन से बात कर रहे हैं आप? बताइए आपका नाम। प्रेम
1: प्रेम सिंह सिसोदिया
0: सिंह जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे काफी अच्छा मौसम है अभी
0: जी
1: और काफी अच्छी बारिश भी हुई थी कल, और सोयाबीन की फसल लगाई है तो काफी मतलब बरसात का इंतजार और हो रहा है यहाँ पर। मैदानी इलाका है हमारे यहाँ पर और
0: जी
1: सभी लोग कृषि कार्य करते हैं, वो अपने अपने खेतों में सोयाबीन की फसल लगा रखी है
0: जी मौसम कैसा है?
1: जी। मौसम काफी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है अभी, और अभी फिलहाल हम खेत में ही काम कर रहे हैं और मोबाइल से अभी आपको कॉल लगाया और कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं हम
0: बहुत ही बढ़िया। बताइए आज कौन सा गीत सुनाए आपको?
1: जी। अंदाज फिल्म का है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, किशोर कुमार की आवाज में।
0: जी बिल्कुल, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग,
1: हेलो, हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, हम दिमागी छतरपुर से बोल रहे हो मैम। कैसे
0: बिमल जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी मैम? ठीक हो? मैं अभी दुकान में है, दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी मैम, हमको सुनना है राजा भैया का, तुझसे हंस के रोना, ये गाना सुनना है मैम।
0: जी बिल्कुल, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: हेलो आसम। मैं आसम का भोजा डिस्ट्रिक्ट से नमरा शर्मा बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ मैम, आप लोग?
0: हम भी बहुत ही बढ़िया। बताइए कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: मौसम तो अच्छा है मैम, मैं लेकिन अभी घर पे नहीं हूँ। मैं अभी जम्मू में हूँ।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मुझे आज साजन का वो अलका याग्निक का गाया हुआ गाना है ना, तू मैं तेरे शायर तू मेरे शायरी, ये वाला गाना सुनना चाहता हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल, चलिए आपकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं। धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: हेलो हाफ लॉन्ग दीदी, नमस्ते। डिस्ट्रिक्ट
0: नमस्ते। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: चौराहे सोनारी से बात कर रहा हूँ, भाईकन मुंडा।
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आप सभी ठीक है ना?
0: हाँ, हम भी बहुत ही बढ़िया है। बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है मिलेंगे मिलेंगे, इसमें गाने का टाइटल है इश्क की गली, यही गाना सुना दीजिएगा।
0: जी
1: और कुछ दोस्तों के भी नाम लेना चाहूंगा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, रुनु पात्र, लाखी, जुगेंद्र रोंगटी, स्मिता बसुमतारी, अंजलि बसुमतारी, और आकाशवाणी हफलंग के सभी कार्यकर्ताओं को ये गाना डेडिकेट रहेगा, और आपको भी।
0: जी धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग,
1: हाँ जी नमस्ते। तो
0: नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं कहा छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। अच्छा
0: छत्तीसगढ़ में कैसा है मौसम?
1: मौसम आज धूप खिला हुआ है।
0: अच्छा, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, फिल्म सॉन्ग।
0: जी धन्यवाद, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

तो ये था आज के हेलो हाफलोंग कार्यक्रम का आखिरी कॉल। कल फिर से मैं हाजिर रहूंगी आपके साथ हेलो हाफलोंग कार्यक्रम की और एक कड़ी लेकर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। आप अपने कॉल के जरिए आपके पसंद का गाना अपने दोस्तों को डेडिकेट भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय रहेगा बुधवार के दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा हैंडल आकाशवाणी हाफलोंग है। तो आज के लिए मुझे यानी रिनी को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की दूसरी सभा यहीं समाप्त होती है। पर कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।